0: हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: तड़ाई मासे में जी दार तो ये जो पदसा पर सीधे तसा हो कसी थी
1: जनाती से तारखाना पर सफर के हम एस्मा वॉशिंग पाउडर ओ खसरी
0: एस्मा वॉशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह करता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वॉशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुर्ता एस्मा वॉशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी ओ स्टूल कुर वाला ना फसल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या चेप एश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना एश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना ना हर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

ओके जी बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सरंगे ज बनु गुलना आयशा सिद्दीकी सिद्दीकी बनु की दी आवाज ओके दी डी न मननसी खुशालशी आयशा दी मुखुरडी न मननसी चितरोग लेसी और प्रोग्राम से देसी में सोक सुबह रजी रेगुलर बेस में दी बराजी कना आयशा जमा खुरी तो बदास के वे कना कि दी डुमेल दी बनी सुमरा हा दी मिश फैन दी के ना दे आगी हाजिरी बोला गवे शाद से सुक ने भी कने ब माता पटक ने मैसेज के छी भाई अनन से कम ने कना फला नहीं खोर पनो टेंशन कॉस्मेटिक्स प्रोग्राम के नदुरो वाले कना जब ओवर पे ब्या अशा डबल के जुर्माना लगो सी दी सी सुडी र मनन सी थैंक यू सो मच सी आयशा सिद्दीकी किता सुरागली प्रोग्राम से मोर सर शिरकत को छी बोल वे छी भाई मैं करक वाले लिसनर को एक हम दूंगी आप लोग एक बार जरूर नो टेंशन प्रोडक्ट से यूज करो फिर हमें तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे मनन से अच्छा भाई हमारी अच्छा जी अच्छी बाकी आप लोग भी हमारी बाई की तारीफ करे डेरा मनन सी नो टेंशन ऑल प्रोडक्ट जिंदाबाद आई एम मना डेरा मनन जी मना जमा खुरी खुशहाल से कदर मन से दिन बाजी दे टांग मरे नाशी बरकी अभी डाले देवी से रहमान बिठाने ते सी डेरा मनन जी बरकी से लगे से प्रोग्राम और एक रसर से लगे छुपी विषय दर्शन लगी लखवी लश दी गुजार कवि दर्थम लगी लकवी लश दी गुजार कवि इस तरह के बोली पटिकड़ी कुल छिवा द कवि दर्थम लगी लकवी लश दी गुजार कवि इस तरह के बोली पटिकड़ी कुल छिवा द कवि लस रबांदिवा छवे गुल छ बहान कवि लास रबांदिवा छवी गुल छ बहान कवि दह में जोड़ पल गणी मान छ गे लकवि ऐदा हमें जोड़ पल गणी मान छ गे लकवि हर महाम ये मातिकड़ी हर सहर वाद कवि हर महामी मातिकड़ी हर सहर वधक वी सुखम ची दरो वही जान सर दुख कवि सुखम ची दरो वही जान सर दुख कवि यार तद गजल पनु यार तद गजल पनु दर्द दर्द की सक बेड़े रख यार तद गजल पनु दर्द द दर्द की सक बेड़े र मनन सी खुशहाल शे कदर मन सी सुई बरकी से बेड़े र मनन सी खुशहाल शे हाँ

0: are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।

हाँ जी बिल्कुल, तो मैसेज दिला रहे चुकुम जी मलगर रोले दी कहना बिल्कुल आप इंतजार कई सलाहुद्दीन फ्रॉम बन्नू और सुरानी सलाम अख्तर नवाज लाला एंड लेसनर और सो इज वेरी नाइस स्पेशल तारिक खान एम एस डी गुल लला राज ओ भाई था डेरा मनना। हाँ बिल्कुल था सलाम चुकुम दी बिल्कुल और असदरता। हाँ जी बिल्कुल देस रही ची प्लीज प्ले उस्ताद और शावली और सरा पश्तो संग मीना आर दे। चलो ठीक है ठीक है।

हाँ जी बिल्कुल मेरा वाला संदरा जी कुमार लोगों ने संदरा की मतलब ये दावा रोस्टर एंजॉय करवे चेता वो हमने से और बिया बरोसू और प्रोग्राम मुमक्तब ये तो सिकाल तो से मैसेज जी कुंडी आवश्यक हो।